याज्ञा करामः। सर्वबलधारिणो अनाद्य अनन्तो दिव्येनि मोक्षाम्पन्न मातावन कन्यमरियतुमन्गे गतः प्राणय ओबगे श्री कुमारयाट ओबिन वासस्थानयक् वन लेस इस्प्रीतु सांतु अरमिन हेतुयुक्त कर दी वदाला वेद। अप सतुटु सिहिकरन ओतुमियगे दयाबर याज्ञाव बला अपटे देन्नाव नपुरु वलिन हा अनवरत मरणेन गलवीम सलसो मनव मे की दे अपगे स्वामी वो जेसु क्रिसु सुहांसे उदिसाम अपट लेबेवा।

0: खाती हला हे दिलियानी हम आला दिले बने ई खाती हाले हम आला दिले आले खाती हला हे के दिलियाना बने बने वेले लो असुते बड़ा खडरवा लिबा हे मेने ले थे मा खातीला दिले दिला सोए नवतल दिन असुते बल येशु स्वांस के नामे ने फले आऊ
1: देखे मा खातीला रे तेरे बे
0: ई हमला के दियाले हमा तेरे
1: बे दे दे रवा दिला हालेलुया
0: इतेलिया माला माती हाना हेले केती लिहा मेले मा दिलिया ले ओबरा सुदी वेवा स्वामी इन बात ओ बात सी उदाउ करन ने किने